नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातः कालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

भाई ने बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हासिल थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय निहाते। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आज बारिश नो पानी है एनु आपड़ा संग्रहण हरते करी शक। जानंगा आज कार्यक्रम ने माध्यम देखी कि संरक्षण हूँ कहवाए है ने आ आपड़े किसान भाई बहनों बल्ले किम जरूरी है ने हरते अगर आपड़े जल संरक्षण करो तो आपड़े आ भूजल ना स्तर ने मिट्टी में नमी ने बढ़ावी ने राखवा में मदद करी शके। तो वाते तरना विषय में हमारी अब तक घना कानी थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बहनों आप हमरते रहो आपड़ो रेडियो अपनी बातें वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थई सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीवी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है एक शिक्षक की सीख को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें जीवन की सीख और जिनके संस्कार जीवन पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं हमारे शिक्षक। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन को सही दिशा देने का काम भी करते हैं। तो आज कार्यक्रम में जानेंगे एक रेडियो ड्रामे के तौर पर इन सारी बातों को कि एक शिक्षक की सीख किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सीमा और राधा नाम की दो सहेलियां हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, जिसमें सीमा जो है अनुभवी और समझदार महिला है और राधा जो कि युवा महिला है जो जीवन की चुनौतियों से परेशान है। तो बातें ढेर सारी रहेंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है एक शिक्षक की सीख को लेकर। श्रोता साथियों, कई बार एक शिक्षक की कहीं छोटी सी बातें वर्षों बाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हम हार मानने लगते हैं, जब हमें सही और गलत का फैसला करना होता है, तब हमें अपने शिक्षक की सीख याद आती है। एक अच्छा शिक्षक केवल विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उसके भीतर छिपी संभावनाओं को भी पहचानता है, उसे आत्मविश्वास देता है और उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। आज का यह कार्यक्रम एक ऐसी ही सीख पर आधारित है जिसने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। तो आइए सुनते हैं दो महिलाओं के बीच के इस रोचक संवाद को।
1: अरे राधा बहन, आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चेहरे पर मुस्कान तो जैसे खोई गई है तुम्हारी।
2: क्या बताऊं सीमा बहन, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी पैसों की परेशानी, लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बनकर रह गई है।
1: अरे राधा बहन, जीवन में परेशानियां तो सबके पास होती है, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला भी तो हमारे अंदर ही होता है।
2: हौसला भी कब तक रखूं? कई बार लगता है कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन परिणाम ही नहीं मिलते।
1: तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने स्कूल के शिक्षक की एक सीख याद आ रही है।
2: कैसी सीख सीमा?
1: अरे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जीवन में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परिणाम देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: सीमा, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन जब लगातार कठिनाइयां सामने आती है तो विश्वास डगमगाने लगता है।
1: हाँ राधा बहन, यही तो समय होता है जब शिक्षक की सीख काम आती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पेड़ को फल देने में समय लगता है, और किसान बीज बोने के अगले दिन फल मांगने लगे तो क्या होगा?
2: फल तो नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, उसे धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी, पौधे की देखभाल करनी होगी, तभी कहीं जाकर उसे फल मिलेगा।
2: सीमा, मतलब क्या सफलता धीरे धीरे आती है?
1: बिल्कुल, जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती।
2: सीमा, तुम्हारे शिक्षक और क्या सिखाते थे?
1: वे कहते थे कि दूसरों से तुलना मत करो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
2: बिल्कुल सीमा, ये बात तो आजकल बहुत जरूरी हो गई है। लोग हर समय अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं।
1: हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर बाद में दुखी भी हो जाते हैं। तुम्हें पता है गुरुजी कहा करते थे कि अगर गुलाब खुद की तुलना सूरजमुखी से करने लगे तो वह कभी अपनी सुंदरता नहीं देख पाएगा।
2: वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है।
1: हाँ, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, हमें अपनी खूबियों को खुद ही पहचानना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सीमा, आजकल तो बच्चों में भी धैर्य कम होता जा रहा है।
1: सही कहा, हमारे शिक्षक कहते थे कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नया पाठ होती है।
2: वो कैसे?
1: अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय एक बार गिर जाए और फिर भी कभी साइकिल न चलाए, तो क्या वह साइकिल चलाना सीख पाएगा?
2: बिल्कुल नहीं सीमा।
1: हाँ, उसे बार बार प्रयास करना होगा। जीवन भी ऐसा ही है राधा, गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना गलत है।
2: हाँ सीमा, तुमने ये बात तो सच कही, अगर लोग ये बात समझ जाए तो बहुत सी निराशाएं खत्म हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल, और एक और बात गुरुजी हमेशा कहा करते थे।
2: वो क्या सीमा?
1: अच्छा इंसान बनना सफल इंसान बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
2: आज के समय में तो लोग केवल सफलता की ही बात करते हैं।
1: हाँ, लेकिन सफलता बिना अच्छे चरित्र के तो अधूरी है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान बन जाए लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता हो ही नहीं, तो लोग तो उससे दूर ही रहेंगे।
2: बिल्कुल सही।
1: गुरुजी कहते थे कि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, उसे तो अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है।
2: हाँ सीमा, अब समझ आ रहा है कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते थे।
1: हाँ, शिक्षक जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।
2: हाँ सीमा, मुझे भी अपने स्कूल के शिक्षक की याद आ रही है। वे कहती थी कि हर दिन कुछ नया सीखो।
1: देखा, वर्षों बाद भी उनकी बातें हमें याद है।
2: क्योंकि सीमा, वे बातें केवल शब्द नहीं थी बल्कि जीवन की सच्चाई थी।
1: हाँ, और यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत होती है।
2: सीमा बहन, आज तुमसे बात करके मन बिल्कुल हल्का हो गया।
1: क्यों?
2: क्योंकि मैं अपनी समस्याओं को अंत समझ रही थी, जबकि वे तो जीवन की परीक्षा हैं।
1: बिल्कुल, और एक बात और याद रखो बहन, हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाने आती है।
2: सीमा, अब मैं परेशानी से भागूंगी नहीं, उसका सामना करूंगी।
1: हाँ, और यही तो एक सच्चे शिक्षक की सीख है।
2: और मैं यह सीख अपने बच्चों को जरूर दूंगी।
1: हाँ, ताकि आने वाले पीढ़ी भी मजबूत, आत्मविश्वासी और संस्कारी बने, है ना?
2: हाँ बिल्कुल।
1: चलो फटाफट से चलो, घर के काम कर लेते हैं।
2: हाँ चलो, चलते हैं सीमा।
0: साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना सीमा और राधा की बातों को, कि किस तरीके से सीमा राधा को समझा रही है कि जीवन में परेशानियां तो आती ही है, उन परेशानियों से हमें कैसे बचने की जरूरत है। श्रोता साथियों, एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं पढ़ाता बल्कि जीवन का अध्याय भी खोलता है। वह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखें, असफलताओं से कैसे सीखें, दूसरों का सम्मान कैसे करें और अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि समय बीत जाता है, स्कूल छूट जाता है, कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की सीख कभी समाप्त नहीं होती। वह हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जब जब श्रोता साथियों जीवन की राह कठिन होती है, तब तक शिक्षक के शब्द दीपक बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें अपने जीवन में उन सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने हमें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाया है, क्योंकि एक शिक्षक की सच्ची सफलता उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों में नहीं बल्कि उनके अच्छे चरित्र और अच्छे कर्मों में दिखाई देती है। याद रखिए दोस्तों कि किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन शिक्षक उस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता भी एक टूल है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जैसे कि आज दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की शांति कहीं खोती जा रही है।
0: जी जी।
1: हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, तनाव, डर या असमंजस में जूझ रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन अशांत रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा साधन है जो इस अशांति को कम कर सके।
0: जी जी।
1: और इसका उत्तर है अंजलि, एकाग्रता।
0: बिल्कुल।
1: एकाग्रता केवल पढ़ाई या नौकरी में सफल होने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने और जीवन में संतुलन बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
0: बिल्कुल। तो जागृति से आज कार्यक्रम में जानेंगे कि अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता किस तरीके से एक टूल की तरह कार्य करती है। बातें ढेर सारी हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों से विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता भी एक टूल है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, एकाग्रता केवल जैसा कि आपने बताया था कि नौकरी में सफल होने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन को स्थिर करने और जीवन में संतुलन बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा भटकता हुआ मन। मन कभी अतीत की गलतियों से उलझ जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कभी वर्तमान में रहना उसे सबसे कठिन लगता है। जागृति जी, जब मन एक साथ कई दिशाओं में दौड़ता है, तब व्यक्ति थक जाता है, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है, वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है। यहीं पर एकाग्रता हमारी मदद करती है।
0: जी हाँ,
1: एकाग्रता का अर्थ केवल किसी एक काम पर ध्यान लगाना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य पर पूरी तरह ध्यान देता है, तब उसका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। परिणाम स्वरूप तनाव कम होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, आपने देखा होगा कि जब हम किसी पसंदीदा काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब कुछ समय के लिए हमारी सारी चिंताएं गायब हो जाती है। कभी कोई चित्रकार चित्र बनाते समय का ध्यान नहीं रखता, कोई संगीतकार संगीत में खो जाता है, कोई किसान खेत में काम करते हुए अपनी परेशानियों को भूल जाता है।
1: जी जी,
0: ये सब एकाग्रता की शक्ति है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाने वाले साधनों की भरमार। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले संदेश, अनगिनत वीडियो और सूचना हमारे मन को हर पल खींचती रहती है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ मिनट में दूसरे काम की ओर चले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका परिणाम श्रोता साथियों ये होता है कि हमारा मन कभी पूरी तरह शांत ही नहीं हो पाता। अधूरे ध्यान के साथ किया गया काम न केवल कम प्रभावी होता है, बल्कि मानसिक थकान को भी बढ़ाता है। एकाग्रता हमें इस बिखराव से बचाती है। श्रोता साथियों, एकाग्र जो व्यक्ति होता है, उसका मन समुद्र की शांत सतह की तरह होता है। बाहर चाहे कितनी भी लहरें उठे, भीतर स्थिरता बनी रहती है। और यही स्थिरता जागृति जी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जब जीवन में समस्या आती है, तब अशांत मन घबरा जाता है, लेकिन एकाग्र मन समाधान खोजने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि एकाग्रता केवल शांति नहीं देती, बल्कि संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी देती है। युवाओं के जीवन में तो एकाग्रता का महत्व और भी अधिक हो जाता है। आज का युवा अवसरों से भरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन अवसरों के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: प्रतियोगिता, करियर की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता और सामाजिक दबाव कई बार युवाओं को मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। यदि युवा अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना सीख जाएंगे, तो वे इन चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि एकाग्रता आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं श्रोता साथियों, तो उसके परिणाम बेहतर आते हैं। अच्छे परिणाम हमें अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाते हैं, और धीरे धीरे यही विश्वास जागृति जी सफलता की नींव बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है श्रोता साथियों, ये एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक होता है, उसी प्रकार मन को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन ऐसे साधन है जागृति जी, जो एकाग्रता को बढ़ाने में सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना भी मन को स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसके अलावा अपने दिल की स्पष्ट योजना बनाना भी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, तब हमारा मन कम भटकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और भी बातें जानेंगे एकाग्रता को लेकर, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम की जरूरत होती है, उसी प्रकार एकाग्रता का अभ्यास करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: एकाग्रता केवल श्रोता साथियों व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तब गलतफहमियां कम होती है। जब समाज अपने वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तब विकास की गति बढ़ती है। जब राष्ट्र अपने लक्ष्यों पर एकाग्र रहता है तब प्रगति के नए अध्याय लिखे जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एकाग्रता केवल व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज की भी शक्ति है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण निकालें जहां हम स्वयं से जुड़ सके। कुछ समय मोबाइल से दूर रहें, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, कुछ समय अपने विचारों को समझने में लगाएं और कुछ समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में लगाएं।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि जो अशांति हमें परेशान कर रही थी वो कम होने लगी है। श्रोताओं, अशांति बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की अव्यवस्था से अधिक पैदा होती है।
0: जी जी।
1: जब मन व्यवस्थित होता है तब कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। एकाग्रता उसी व्यवस्था की कुंजी है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, यह हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है, यह हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें मानसिक शांति का भी अनुभव कराती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन के भाग दौड़, तनाव और अशांति के बीच यदि कोई सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है तो वह है एकाग्रता। जब ध्यान बिखरता है तो शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वही शक्ति सफलता, संतुलन और शांति का आधार बन जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है बल्कि सही दिशा देनी है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है, मजबूत चरित्र बनाता है और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब मन शांत होता है अंजलि तो विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय मजबूत होते हैं और जीवन की राह आसान लगने लगती है। अशांति के अंधेरे को दूर करने के लिए हमें बाहर नहीं अपने भीतर एक दीप जलाना होगा और उस दीप का नाम है एकाग्रता। श्रोताओं, आज से हम हर दिन कुछ पल स्वयं के लिए निकालें ऐसा मन में हमारे ठानना होगा, अपने मन को समझना होगा, अपने लक्ष्य को पहचानना होगा, अपने विचारों को सही दिशा देनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख जाते हैं वो जीवन की हर चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, शांत मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं और अच्छे विचार ही एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम में सफल होने का साधन नहीं है बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: जिस व्यक्ति का मन स्थिर और लक्ष्य पर केंद्रित होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, अपने निर्णय सोच समझ कर लेता है। आज के समय में जब हमारा ध्यान हर पल मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के आकर्षणों से भटकता रहता है तब एकाग्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि एकाग्रता जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्म संयम से विकसित होने वाली क्षमता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें, समय का सही प्रबंधन, नियमित अभ्यास, वर्तमान विश्राम और सकारात्मक सोच हमारे मन को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और हर कार्य की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाती है।
1: जी हाँ अंजलि, तो इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहेंगे कि जीवन में अशांति पूरी तरह से समाप्त हो जाए ये संभव है ही नहीं, लेकिन अशांति के बीच भी शांत रहना, परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रहना और चुनौतियों के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही संभव है। यही शक्ति हमें एकाग्रता देती है। इसलिए याद रखिए, जब मन बिखरता है तो समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब मन एकाग्र होता है तो समाधान दिखाई देते हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए अपने मन को भटकाओ नहीं बल्कि उद्देश्य से जोड़िए, अपने विचारों को चिंता नहीं बल्कि चिंतन की दिशा से जोड़िए। इसलिए हम अपने मन के स्वामी तभी बनेंगे जब तक हम अपने उद्देश्य में क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि एकाग्र मन ही शांत जीवन, सफल भविष्य और सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कह सकते हैं श्रोता साथियों को कि अपने मन को केंद्रित करो और सपनों को साकार करो।
1: बिल्कुल,
0: एकाग्रता को शक्ति बनाओ और जीवन को बेहतर बनाओ।
1: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचाइएगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए यह गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुकी जाएंगा, हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ बिल्कुल।
2: मनीषा और कशिश, आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है अजवाइन का पौधा किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
0: जी हाँ।
2: हम देखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियां प्रदान की हैं।
0: बिल्कुल।
2: इसमें अजवाइन एक ऐसी महत्वपूर्ण औषधि या जड़ी बूटी है जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है।
0: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, इसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके औषधीय गुण इसे एक प्राकृतिक औषधि का दर्जा देते हैं।
0: बिल्कुल।
2: आयुर्वेद में अजवाइन को पाचन शक्ति बढ़ाने, गैस अपच दूर करने, सर्दी जुकाम से राहत देने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि माना जाता है।
0: बिल्कुल।
2: आज के समय में अनियमित खानपान, तनाव, फास्ट फूड, बदलती जीवन शैली के कारण पाचन संबंधित समस्याएं हम देख रहे हैं मनीषा और कशिश की तेजी से बढ़ रही है।
0: जी हाँ।
2: ऐसे समय में अजवाइन जैसे प्राकृतिक औषधि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
2: यदि इसकी सही मात्रा और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में सहायता कर सकती है।
0: जी हाँ।
2: तो
0: जी
2: आज
0: हाँ।
2: जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि अजवाइन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाए हम।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अजवाइन का पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से एक प्राकृतिक रक्षक है और इसके औषधीय गुण क्या है।
1: जी हाँ,
0: अगर बात करें अजवाइन की अंजलि जी, तो देखते हैं मनीषा और अंजलि जी की, अजवाइन एक सुगंधित बीज वाला पौधा होता है।
1: जी हाँ,
0: जो श्रोता साथियों कई क्षेत्रों में उगाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: इसके छोटे छोटे भूरे रंग के बीजों में तीखी सुगंध और हल्का कड़वा स्वाद होता है और इन्हीं बीजों का उपयोग मसाले और औषधि दोनों के रूप में किया जाता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि अजवाइन केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है बल्कि ये अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें श्रोता साथियों फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण औषधि विशेषता को बढ़ाता है।
1: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आयुर्वेद में भी अजवाइन को वात और कफ दोष को संतुलित रखने वाली औषधि माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: इसका स्वाद तीखा, प्रभावी, गर्म और पाचन को मजबूत करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार श्रोता साथियों, यह है वो हमारी भूख बढ़ाती है, भोजन को अच्छी तरह से पचाने में सहायता करती है, साथ ही श्रोता साथियों शरीर में जमा हानिकारक गैस को भी बाहर निकालती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कशिश और अंजलि जी के कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों में अजवाइन का उपयोग पीढ़ियों से किया जा रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अजवाइन का आयुर्वेद में क्या महत्व है, यही बात करें पाचन तंत्र के लिए ये वरदान किस तरीके से है।
1: बिल्कुल,
2: तो श्रोता साथियों अजवाइन का सबसे बड़ा लाभ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। भोजन
0: हाँ।
2: के बाद अगर थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन चबान ले हम, तो पाचन क्रिया जो है वो सक्रिय रहती है।
0: बिल्कुल,
2: हाँ। पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करती है, अपच से राहत देती है और पेट फूलने की समस्या को कम करने में भी मदद करती है। जिन लोगों को बार बार गैस, भारीपन या बदहजमी की शिकायत रहती है, उनके
0: हाँ।
2: लिए सीमित मात्रा में अजवाइन का सेवन करना लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल,
2: अजवाइन पेट में पाचक रसों के स्त्राव को बढ़ाकर भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो ये तो आपने बात की पाचन तंत्र की। अब यही अगर कब्ज की समस्या में उपयोगी है किस प्रकार से, इसको लेकर हम बात करें, तो दोस्तों कब्ज आज की एक आम समस्या बन चुकी है, ये बात हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक कब्ज रहने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में अजवाइन जो है वो आंतों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही मल त्याग को आसान बनाने में मदद करती है। साथियों कह सकते हैं कि पर्याप्त पानी और संतुलित आहार के साथ सीमित मात्रा में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो कब्ज और पाचन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उससे हमारा बचाव हो जाता है।
1: बिल्कुल जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
0: जी हाँ,
1: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी अजवाइन का पौधा और उसके औषधीय गुणों को लेकर, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभकारी है इसको लेकर। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था कि अजवाइन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। साथ ही हमने जाना था कि यह पाचन तंत्र को किस प्रकार मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: यहीं अगर बात करें श्रोता साथियों गैस और एसिडिटी में राहत, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तेल और मसालेदार भोजन, अनियमित दिनचर्या और देर रात तक भोजन करने से गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: अजवाइन में मौजूद सक्रिय तत्व श्रोता साथियों गैस बढ़ाने की प्रक्रियाओं को कम करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि पेट में होने वाले ऐंठन और जलन से भी राहत में मदद करता है। इसी कारण श्रोता साथियों भारतीय घरों में भोजन के बाद अजवाइन का सेवन एक पारंपरिक आदत रही है।
2: बिल्कुल। यही कशिश और मनीषा बात आती है भूख बढ़ने में सहायक की। तो श्रोता साथियों, कुछ लोगों को भूख कम लगती है जिसके कारण शरीर को आवश्यक पोषक नहीं मिल पाते। अजवाइन पाचन रसों को सक्रिय कर भूख बढ़ाने में मदद करती है। इससे भोजन के प्रति श्रोता साथियों रुचि बढ़ती है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त हो पाते हैं। अजवाइन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक मुक्त कणों से बचाने में सहायता करते हैं। इसके जीवाणुरोधी और फफूंदरोधी जो गुण होते हैं श्रोता साथियों शरीर को कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसका सीमित उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग प्रदान करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही श्रोता साथियों हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की, तो देखा जाता है कि अजवाइन का उपयोग केवल पाचन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए भी लाभकारी है।
2: बिल्कुल
1: अंजलि जी और मनीषा, मौसम बदलने पर जो आम समस्याएं हमें हो जाती है जैसे कि सर्दी, नाक बंद, हल्की खांसी, इन सभी समस्याओं में पारंपरिक रूप से अजवाइन का उपयोग किया जाता है।
3: जी हाँ
1: दोस्तों, इसकी तीखी सुगंध श्वसन मार्गों को खुला रखने में सहायता करती है।
2: बिल्कुल।
1: साथ ही सांस लेने में कुछ हद तक आराम का अनुभव करा सकती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि अधिक बोलने, धूल धुएं या मौसम में बदलाव के कारण भी हम देखते हैं कि हमारे गले में खराश आ जाती है।
2: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों अजवाइन का सीमित और पारंपरिक उपयोग गले को आराम देने में भी सहायक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: यही कारण है श्रोता साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग हैं वो घरेलू उपायों के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
2: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि स्वस्थ हृदय पूरे शरीर के लिए आवश्यक है।
1: जी हाँ,
0: अजवाइन में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर में वसा के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। श्रोता साथियों हम देखते हैं कि यह किसी भी प्रकार की बीमारी के उपचार में उपयोगी है। लेकिन श्रोता साथियों संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही सीमित सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है।
2: बिल्कुल। तो कशिश और मनीषा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अजवाइन के कई सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। अजवाइन का पौधा प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो साधारण दिखने के बावजूद असाधारण औषधीय गुणों से भरपूर है।
1: बिल्कुल।
2: कहना चाहेंगे कि यह केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जो स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, श्वसन स्वास्थ्य का सहयोग करने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने और दैनिक जीवन की कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक भूमिका निभाने के कारण ही अजवाइन का जो महत्व है वो सदियों से बना हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू चिकित्सा में इसका विशेष स्थान इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में उपलब्ध सरल साधन भी स्वास्थ्य की रक्षा में प्रभावी योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दवाओं पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तब ऐसे में श्रोता साथियों अजवाइन जैसी प्राकृतिक औषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: वैसे तो श्रोता साथियों ये किसी गंभीर बीमारी का विकल्प या पूर्ण उपचार नहीं है, लेकिन संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और साथ ही स्वच्छता के साथ इसका उचित और सीमित उपयोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
2: जी हाँ,
1: इसलिए हमें अपने पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक सोच के साथ अपनाते हुए साथियों प्राकृतिक औषधीय पौधों के महत्व को समझना चाहिए।
3: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हर परिवार अजवाइन जैसी उपयोगी वनस्पतियों के गुणों को जाने और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करे तो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में हमारी भूमिका अहम होगी।
2: बिल्कुल कशिश।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से अजवाइन और उसके पौधे के औषधीय गुणों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल। हाँ। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
3: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुके जाएंगा, खेतर मंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि धरती केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जल स्रोतों और आने वाली पीढ़ियों की भी साझा धरोहर है।
0: जी जी,
1: हमारा जीवन प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है। शुद्ध स्वच्छ पानी, उपजाऊ मिट्टी, संतुलित जलवायु हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन शैली और सुविधाओं की दौड़ में हमने प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं नुकसानों में से सबसे बड़ी समस्या यह है प्राकृतिक बैग का अत्यधिक उपयोग।
0: बिल्कुल,
1: आज शायद कोई बाजार, दुकान या घर ऐसा नहीं होगा जहाँ प्लास्टिक बैग का उपयोग न होता हो। श्रोता साथियों, यह हल्का, सस्ता और सुविधाजनक अवश्य है, लेकिन इसके परिणाम इतने गंभीर हैं कशिश कि पूरी दुनिया इसके दुष्प्रभाव से जूझ रही है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि हर वर्ष 3 जुलाई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि इस दिवस का उद्देश्य केवल प्लास्टिक बैग का विरोध करना नहीं है बल्कि लोगों को ये समझाना है कि आज हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे कपड़े का थैला साथ रखना, प्लास्टिक बैग से मना करना और पुनः उपयोग योग्य जो वस्तुएं हैं उनको अपनाना पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होने वाली है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे श्रोता साथियों को इस प्यारे से गीत के साथ पहले मनोरंजन हम करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हमने विषय तो आपको बता ही दिया कि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है अंजलि जी, उसके बैगों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है लोगों को।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इसके विपरीत कपड़े, जूट, कागज और अन्य पर्यावरण अनुकूलित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, आज प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मात्रा हम देख सकते हैं कि धरती, जलवायु और जीव जंतुओं के लिए गंभीर संकट बन चुकी है।
1: जी जी।
0: ऐसे में यह दिवस हमें सोचने और अपनी आदतों में बदलाव लाने का अवसर देता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि प्लास्टिक बैग पेट्रोलियम से बनने वाला एक कृत्रिम उत्पाद है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हल्का, सस्ता, जलरोधी और आसानी से उपलब्ध होता है।
0: जी हाँ।
1: इसी कारण दुकानदारों और उपभोक्ता दोनों इसे तेजी से अपना लेते हैं।

0: हैं, लेकिन श्रोता साथी इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: उपयोग केवल कुछ मिनट का होता है, जबकि इसका प्रदूषण कई पीढ़ियों तक बना रहता है। हम देखते हैं कशिश के प्लास्टिक बैग मिट्टी की उर्वरा को भी कम कर देता है।
1: जी जी।
0: जब ये खेतों में पहुंचता है तो वर्षा का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता, इससे भूजल स्तर प्रभावित होता है और भूमि की गुणवत्ता घट जाती है।
1: बिल्कुल,
0: नदियाँ, तालाब और नालियाँ प्लास्टिक बैग से भर जाती हैं। बरसात के समय जब जल निकासी रुक जाती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शहरों और गांवों में जल भराव का एक बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा भी है।
1: बिल्कुल,
0: समुद्रों में पहुँचने वाला कशिश प्लास्टिक लाखों समुद्री जीवों के लिए जानलेवा बन जाता है। कई मछलियाँ, कछुए, पक्षी इसे भोजन समझ कर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक अभियानों के द्वारा की गई थी।
0: बिल्कुल,
1: इसका उद्देश्य साथियों दुनिया भर के लोगों को प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना था और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि समय के साथ अनेक देशों ने प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाए हैं।
0: जी हाँ,
1: कई शहरों और राज्यों में कपड़े या जूट के थैलों को बढ़ावा दिया जा रहा है अंजलि जी। तो ऐसे में आज ये दिवस श्रोता साथियों विश्व के अनेक देशों में जन जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाओं, विद्यालय कार्यक्रमों और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, जब प्लास्टिक बैग खुले में जलाए जाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा विषैला होता है। यह हवा को प्रदूषित करता है और श्वसन संबंधित रोगों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा प्लास्टिक धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदल कर भोजन और पानी में मिल जाता है।
1: जी हाँ,
0: सूक्ष्म प्लास्टिक कण मानव शरीर में पहुंचकर दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि प्लास्टिक बैग सस्ते और हल्के अवश्य होते हैं साथियों, लेकिन इनके नुकसान बहुत बड़े होते हैं। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, नालियों और जल निकासी व्यवस्था को जाम करता है, जिससे जल भराव की समस्या बढ़ती है। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि नदियों, तालाबों और समुद्रों में पहुंचकर जल प्रदूषण इससे फैलता है। गाय, पक्षी और समुद्री जीव भोजन समझकर प्लास्टिक को खा लेते हैं अंजलि जी, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही जो छोटे छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं साथियों, वे भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से प्लास्टिक जो है वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल,
0: यही जैसा कि हम आपके माध्यम से भी जान पाए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में खुले घूमने वाले गाय, बैल, बकरी और अन्य पशु जो है वो अक्सर कूड़े के साथ प्लास्टिक बैग भी खा लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: ये उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और कई बार उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। श्रोता साथियों, ये केवल पशु कल्याण का नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी प्रश्न है।
1: बिल्कुल,
0: पहले गांवों में कपड़ों के थैले, टोकरी और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता था, लेकिन अब प्लास्टिक बैग ने उनकी जगह ले ली है। साप्ताहिक हाट बाजार, किराना दुकानें, सब्जी मंडियां और छोटे व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जा रहा है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ग्रामीण पर्यावरण भी गंभीर रूप से संकट में आ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि प्लास्टिक का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी है। जैसे कि प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों से होता है और इसके उत्पाद और नष्ट करने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं।
0: जी हाँ।
1: जो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। साथियों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लास्टिक बैग अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारी युवा साथियों की भूमिका अहम बनती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा समाज में परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी शक्ति माने जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि युवा साथी स्वयं प्लास्टिक बैग बंद करें और दूसरों को भी प्रेरित करें इसके लिए, तो बड़ा बदलाव संभव है अंजलि जी।
0: जी हाँ।
1: साथ ही युवाओं के माध्यम से कॉलेज, स्कूल, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं में मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा साथी पर्यावरण संरक्षण का संदेश लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, कपड़े और जूट के थैले मजबूत होते हैं, कई बार उपयोग किए जा सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। श्रोता साथियों, ये न केवल कचरा कम करते हैं बल्कि स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। यदि प्रत्येक परिवार अपने घर में 2-3 कपड़े के थैले हमेशा तैयार रखे तो प्लास्टिक बैग की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: सरकार ने कई राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन केवल सरकार कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होती है। जब तक नागरिक स्वयं जागरूक नहीं होंगे कशिश, तब तक पूर्ण सफलता संभव नहीं है।
1: जी
0: स्कूलों,
1: हाँ,
0: पंचायतों, स्वयं सहायता समूह, युवाओं और संगठित सामुदायिक जो संगठन है उनको मिलकर जागरूकता अभियान चलाने होंगे, तभी बदलाव संभव हो पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो शुरुआत हमें परिवार से करनी होगी। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से ही होती है। यदि प्रत्येक परिवार खरीदारी के समय कपड़े या जूट का थैला साथ में रखे या शुरू कर दे ऐसा, तो प्लास्टिक बैग की खपत में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी। श्रोता साथियों,
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों से कि बच्चों को भी बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनाना भी माता पिता का ही कर्तव्य बनता है। साथ ही इसमें विद्यालय और महाविद्यालयों की जिम्मेदारी भी है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण को केवल एक जानकारी के तौर पर नहीं देखा जाए बल्कि एक व्यवहार की तरह अपनाया जाए। विद्यार्थियों को यह बताया जाए श्रोता साथियों कि किस प्रकार से प्लास्टिक के ढेर सारे नुकसान हैं और इसके विपरीत अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो इससे हमारे ढेर सारे लाभ कैसे हो सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, हमें क्या करना होगा, तो श्रोता साथियों, हमें बाजार जाते समय हमेशा कपड़े का थैला साथ रखना है, प्लास्टिक बैग लेने से विनम्रता से मना करना है और एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग कम करना है। अपने आसपास प्लास्टिक कचरा न फैलाएं, बच्चों को बचपन से पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दें, गांव और मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाएं, दुकानदारों को वैकल्पिक थैले अपनाने के लिए प्रेरित करें।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, युवा समाज में बदलाव के सबसे बड़े वाहक होते हैं। यदि युवा प्लास्टिक मुक्त अभियान का नेतृत्व करे तो कशिश पूरा समाज तेजी से बदल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: महिलाएं घर की खरीदारी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि वे कपड़े के थैले को अपनी आदत बना ले तो पूरे परिवार की सोच बदल सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज कई पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध हैं हमारे पास में, जैसे कि कपड़े के थैले, जूट के बैग, बांस और प्राकृतिक रेशों से बने उत्पाद, साथ ही पुनः उपयोग किए जाने सकने वाले बैग। इनका उपयोग श्रोता साथियों न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि लंबे समय तक आर्थिक रूप से भी लाभदायक होता है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है, यानी कि गांवों और शहरों में सामूहिक प्रयासों से प्लास्टिक मुक्त अभियान सफल बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय बाजारों, पंचायतों, स्वयं

0: दोस्तों, स्किप के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें हमारी बहुत अच्छी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस को लेकर। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम अंजली जी आज अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित जल, उपजाऊ भूमि और स्वस्थ जीवन मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें श्रोता साथियों याद रखना चाहिए कि प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालते हैं।
1: जी हाँ,
0: नगर निकायों की प्लास्टिक कचरे की सफाई, उसके संग्रहण और निस्तारण पर हर वर्ष कह सकते हैं कि बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, और यही धन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या फिर ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं में लगाया जाए तो समाज को कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने का अवसर भी है। यदि हम सचमुच स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें सुविधा से अधिक जिम्मेदारियों को महत्व देना होगा। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब हम प्लास्टिक बैग लेने से मना करते हैं, तब हम केवल एक थैला नहीं छोड़ते, बल्कि प्रदूषण कम करने, पशुओं की रक्षा करने, जल स्रोतों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों, आइए हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हर खरीदी के साथ कपड़े का थैला अपनाएंगे, प्लास्टिक बैग को ना कहेंगे और प्रकृति को हाँ कहेंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का सच्चा संदेश है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। इसका महत्व श्रोता साथियों कई कारणों से है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, प्लास्टिक कचरे में कमी लाई जाए, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पृथ्वी का निर्माण करना साथियों।
1: जी जी,
0: साथ ही सभी लोगों में जिम्मेदार उपभोग और टिकाऊ जीवन शैली की भावना विकसित करना। अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि इस दिवस के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बैगों का उपयोग कम करना, कपड़े, जूट और अन्य उपयोग किए जाने वाले थैलों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित नुकसान की लोगों को जानकारी देना, साथ ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को श्रोता साथियों मजबूत बनाना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो कई हद तक हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अंजलि जी,
1: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है श्रोता साथियों कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों की कितनी जिम्मेदारी से रक्षा करता है।
0: बिल्कुल,
1: प्लास्टिक बैग का त्याग कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटी सी आदत बदल ले, तो लाखों टन प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण में जाने से रोका जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: परिवर्तन हमेशा श्रोता साथियों किसी बड़े अभियान से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के छोटे और जागरूक निर्णय से शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें केवल समस्या नहीं बताता, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाता है। यह दिन हमें उपभोक्ता से जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरणा देता है। जब हम खरीदारी के लिए अपना थैला लेकर निकलते हैं कशिश, दुकानदारों को पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अपने बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, तभी इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी को सुविधा के नाम पर पर्यावरण से समझौता नहीं करना है। हमें ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जो स्वच्छ धरती, सुरक्षित जल, स्वस्थ जीव जंतु और हरित भविष्य की दिशा बने। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमें हमारे शब्दों से नहीं श्रोता साथियों, बल्कि हमें हमारे छोड़ी गई स्वच्छ और सुरक्षित धरती से याद रखेगी।
0: जी हाँ, जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो जब लोग कपड़े, जूट या बांस से बने थैले खरीदते हैं, तो स्थानीय बुनकरों और स्वयं सहायता समूह, महिला समूह और छोटे उद्यमों को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इस प्रकार से प्लास्टिक का विकल्प अपनाना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही पहले गाँव में कपड़े की झोली, बांस की टोकरी, पत्तों के दोने पत्तल और कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग होता था।
1: जी जी,
0: ये सभी चीजें पर्यावरण के अनुकूल थी अंजलि जी, लेकिन आधुनिक समय में इन पारंपरिक विकल्पों को हमें फिर से अपनाने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही हमें दोस्तों प्लास्टिक कचरे से प्राकृतिक स्थल, धार्मिक स्थान और पर्यटन क्षेत्र में अपनी सुंदरता को खो देते हैं हम। यदि ऐसे स्थान प्लास्टिक मुक्त हो तो पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और आजीविका को भी लाभ मिल सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है कि आज दुनिया जिस पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है उसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिसे केवल सरकारी नियमों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सोच, जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव आवश्यक है। जब हम अपनी दैनिक आदतों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के तौर पर शामिल करते हैं तब तक किसी भी अभियान की सफलता अधूरी रहेगी। इसलिए यह समय केवल चिंता व्यक्त करने का नहीं बल्कि अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करने का है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें यह समझाता है कि विकास का अर्थ केवल नई सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है बल्कि उन सुविधाओं के प्रभावों को समझ हुए विवेकपूर्ण निर्णय लेना भी है।
0: जी हाँ,
1: कोई वस्तु आज हमें सुविधा दे रही है लेकिन भविष्य में प्रकृति, पशुओं और जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है तो उसका विकल्प अपनाना ही सच्ची प्रगति है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज ही वास्तव में समृद्ध भविष्य का समाज कहलाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है, कुछ छोटी मोटी बातें आगे भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही बनी रहेंगी।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही कार्यक्रम के अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें समझाता है कि विकास का अर्थ केवल नई सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है, लेकिन उन सुविधाओं के प्रभावों को समझते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लेना भी है। यदि कोई वस्तु कशिश आज हमें सुविधा दे रही है, लेकिन भविष्य में प्रकृति, पशुओं, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है, तो उसका विकल्प अपनाना ही सच्ची प्रगति है। श्रोता साथियों, यह भी आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विशेष दिवस तक सीमित न रखें। विद्यालयों में बच्चों को शुरुआत से ही प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। परिवारों में कपड़े के थैले और पुनः उपयोग वस्तुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यापारियों को पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गाँव और शहरों में सामूहिक स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए। जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए, तभी स्थानीय परिवर्तन संभव होगा। कहना चाहेंगे कशिश कि सामुदायिक स्तर पर भी इस दिशा में अनेक सकारात्मक पहल की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह कपड़े और जूट के थैले बनाकर आजीविका के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। युवा जागरूकता रैलियां, स्वच्छता अभियान और जन संवाद आयोजित कर सकते हैं। पंचायतें स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए नियम बना सकती है। यदि समाज के सभी वर्ग एक साथ उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, तो प्लास्टिक प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं, वो प्रभावी तौर पर नियंत्रित हो पाएंगी।
1: जी हाँ जली जी, क्योंकि प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करना केवल पर्यावरण की रक्षा करना उपाय नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, स्वच्छता और भविष्य की सुरक्षा का संकल्प भी है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी सी आदत बदल ले, तो पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन संभव है।
0: जी हाँ।
1: हम सभी को दोस्तों ये बात समझनी होगी कि ना प्लास्टिक बैग हम खुद लेंगे, ना प्लास्टिक बैग देंगे, कपड़े या जूट का थैला अपनाएंगे और स्वच्छ, हरित तथा सुरक्षित पर्यावरण बनाने में अहम योगदान देंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं अंजलि जी कि पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। आज से ही कपड़े का थैला हमें अपनी पहचान बनाना है और प्लास्टिक बैग को ना कहना है साथियों। साथ ही अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी हम बन सकते हैं।
0: जी
1: एक छोटा सा कदम एक बड़ी शुरुआत बन सकता है श्रोता साथियों।
0: जी हाँ कशिश, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना केवल पर्यावरणविदों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही यह तय करती है कि हम आने वाले कल को कितना सुरक्षित बना रहे हैं। यदि हम सुविधा के बजाय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना सीख जाए, तो प्लास्टिक प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान भी संभव है।
1: बिल्कुल,
0: बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन या विशेष अवसर से नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णयों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: यह दिवस केवल प्लास्टिक का विरोध करने का संदेश नहीं देता, बल्कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाते हैं, तो हम केवल प्रदूषण कम नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, सुरक्षित वन्य जीव और स्वस्थ समाज की नींव भी मजबूत करते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, दोस्तों आज आवश्यकता केवल प्लास्टिक बैग का बहिष्कार करने की नहीं है, बल्कि जिम्मेदार उपभोग की संस्कृति विरासत करने की है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम बाहर जाते समय अपना कपड़े या जूट का थैला साथ रखते हैं और अनावश्यक प्लास्टिक लेने से बचते हैं साथियों, साथ ही कचरे का सही प्रबंधन करते हैं और अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं, तब हम केवल एक अच्छी आदत नहीं अपना रहे होते,
0: जी जी,
1: बल्कि एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं।

0: अंजलि जी, यह भी हमें समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का अभियान नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम दोस्तों केवल आज के दिन को ही प्लास्टिक मुक्त रहने का संकल्प लें और बाकी दिनों में पुरानी आदतों पर लौट जाए तो इस दिवस का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वास्तविक सफलता तभी मिलेगी हमें जब पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी वर्ष के हर दिन और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे।
1: बिल्कुल। तो कशिश, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को। नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर ही 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं तू जब जब मुझको पुकारे। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गाजियाबाद से शिशपाल जी। इस गीत की अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति प्रसाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी वेदय जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कविता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू जब जब मुझको पुकारे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है गजब तमाशा, गीत के बोल हैं चुनरी प्यार के उड़े। इस गीत की फरमाइश करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी। मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीओ सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ रहे पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इस गीत की अनुरोध करता है बकाल भुलडाणा से नारायण हगे, कमला हगे, दिव्या हगे, जय हगे। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुनरी प्यार के उड़े। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बोरखेड़ा पित्रामल सिंह। फिल्म का नाम है बेताब, गीत की बोल है जब हम जवान होंगे। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। रतलाम एमपीसी जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस जी राज। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

से भी जुड़ना चाह रही है कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगील, मोरस जंगील, अनिल कुमार जंगील, अजीत कुमार जंगील, आयुष जंगील, नंदिनी जी जंगील, सुखरी कला से जुड़ रही हैं अमित जंगील, सुकुन जंगील, आयुषी जंगील, ओशिका आदित्य और अंजलि जी जंगील। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत और कमरजीत सिंह। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत की बोल है, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशाजी गोस्वामी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पटेल नगर मालोर से डॉक्टर रुमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, आरजू झांझोरिया और गुड्डू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। मजनू का टीला से जुड़ना चाह रहे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे समयद मश्रम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी, अदीप अली जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोले हैं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आ गई?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर?
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत की बोल है ये गलिया ये चौबारा या आना ना दोबारा। इस गीत की फरमाइश करता है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। इसी बीच जूनाचार्य भाटा पर भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चिंपा इस गीत के अनुरोध करता है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़नाचार्य लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। छत्तीसगढ़ से जुड़नाचार्य हैं नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग, अनुराग, कृष्णा जी। इसी बीच जुड़नाचार्य पथरोड से विजय अंबटकर, सुनीता अंबटकर, अक्षय अंबटकर, राधिका अंबटकर, ऋषिकेश जी अंबटकर। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सूरज, राजवाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्स सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, बुलंदशहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरदीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। अकोला से जुड़ना चाह रही अमोल इगले, अर्चना इगले, सर्वेज इगले, अधीराजी इगले। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडनी और निशा जी। नेहरू चौक पेठन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूरज यादव, अनीता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बीबी सिया यादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकता जी यादव और संगीता जी यादव। दुर्गा कॉलोनी हंसी से जुड़ रहे हैं राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरिद्वार से। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोल ही बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराब जहाँ जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो, विलिजी डिकेस्टो। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। मुनावले से जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शायशा जी सोनवने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से आप सुन ही रहे थे मनीषा पटेल के साथ में, अब मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, कभी खुशी कुछ कुछ होता है, गीत के बोल है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, आपको बताना चाहूंगी नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं PS नवाकर, निवा नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंग्ले, सोपान ताडे, आशीष मुहेरकर जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जफराबाद से सुधाकर राजा यादव, प्रशांत राजा यादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणय देशमुख, सानवी कल्पना देशमुख, श्रीरामपुर से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावलेपुड़े से अजय सोनवानी, करिश्मा अविका, सहसा सोनाने, विशाखा मंगलकर जी, खंडवा से जुड़ना चाह रहे राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों लदावली मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों दिल है कि मानता नहीं। गीत के बोल हैं तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मायादेव ऋतिक आदित्य कसाना जी, ये मुरादाबाद से हैं। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शांक साहू, सीमा साहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डहुल, बीपी कुलथे जी। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेसर साहू, कर्णराल चंपा साहू। गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजाज, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है, गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, घूंघट की आड़ से दिल भर का। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ौदी, सागरबाई कंगणकर, परमेश्वरी रोहिणी श्रावणी ईश्वरी कंगणकर परिवार के सभी सदस्यगण। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़े शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, सुपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से और भी दोस्त जुड़े, नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सविया मिखाइल मुजावर जी। करेली बरेली से जुड़ना चाह रहे हैं आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगे मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इश्पित शर्मा, किरण ठाकुर, बैपाशा शर्मा और सोनिया कलका जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ से दिल भर का।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है अमरावती महाराष्ट्र से। बताना चाहूंगी दोस्तों, फिल्म का नाम है विश्वात्मा। गीत के बोल हैं, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना गुणा ने, प्रिय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। साथियों, गुनौर से जुड़ रहे अनिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली जी। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी, इंद्राणी माया साहू। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बरकाकाना से, अफजाल ताज, साइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निफिसाई, अफजल मलिक। गंजुडवारा से जुड़ रहे मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, एयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी जी। अस्तपुरा जिला मऊ से हैं मजर अली अंसारी, रिजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी जी। गाजीपुर से आज़ाद अली, अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। बक्सर बिहार से जुड़ना चाह रहे सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मेरीबा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से शदानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं इसी गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, वसीम महाराष्ट्र से आया है। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथी और राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी और कुमार सानू जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरेश सुषमा सुरेश प्रदीप सुरेश से मायरा सुरेश जी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान डुक्कू जी, और भी दोस्त अमरावती से महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं। दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय राधेकर, रुद्र रामेकर और समस्त रामेकर परिवार सदस्यगण, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज शुभम भट्ट, धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बिबियालिया आयान बाबू जी, और भी श्रोता साथी आकोट से जुड़ रहे हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम पर विजय बेंडे, पवन जरिया, संजीव डाबीराव जी, गणेशपुर गंजुडवारा से है फिरासत हुसैन, ओलक कमर जहां, मोहम्मद अल्फेज, नाहिरा गुड़ियान, शिफा सरवीन जी, जाखुद राजस्थान से समुदाय दयाल खट्टक, विमला देवी, हिमरजीत खट्टक, सोनलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक, दुलपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है गनगोला दत्तागंज बदायूं से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों थानेदार। गीत के बोल हैं टम्मा टम्मा लोगे। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं ईसन खान, शहना बेगम, शहरूब खान, शावरीन शेब, शहबाज खान, शेख खान, ईशान खान, आजमन खान, अरहान खान जी, गंजुडवारा से याशिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, देशानी, निमित आहूजा जी, संदीप बुजुर्ग महाराष्ट्र से, किशोर वड़तकर, शोणम वड़तकर, पुनु वड़तकर जी, येतारा महाराष्ट्र से श्रोता साथी नादेड़ से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गाशी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल, संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, ऋषि राजेश और शीतल राजेश जी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, यवतमाल से हैं निशा राही नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी, बरका काना से नासिन तबस्सुम, अफजल इब्राहिम जी, इफ्फत खार बिहार जी और इब्राहिम जी, मड़ियाई जौनपुर से हैं इरशाद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशा, अजरा तबस्सुम जी, मदारस से हैं जुड़ना चाह रहे हैं अजरुल मजर अंसारी, नौजन अंसारी, आफिया परवीन जी, नरसिंहगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल, परी, कितिका, रमेश चंद्र डांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं टम्मा टम्मा लोगे।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की। और अगली फरमाइश आई है किशोरनगर अमरावती से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों। आपको बताना चाहूँगी, ताल गीत से बोल गीत के बोल हैं ताल से ताल मिला। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी और रितनारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, श्रीदात गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, कृणाल श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमानस राज। बिहार कॉलोनी दिल्ली से है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव। श्रामपुर से जुड़ रहे हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छिन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आयरन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ रहे हैं आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर जी। कानपुर से हैं सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, दिया और पीहू चौरसिया जी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, उत्तराखंड से हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी और शौर्य दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ताल से ताल मिला।

श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे श्रोता साथियों हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुल के रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा बाबर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नर्तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है निस्वार्थता स्वयं से आगे बढ़कर सोचना, यानी कि श्रोता साथियों एक ऐसा विचार जो समाज को जोड़ता है, रिश्तों को मजबूत करता है और मानवता को जीवित रखता है। आज का समय प्रतियोगिता का समय, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है कशिश, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है,
1: बिल्कुल,
0: और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन श्रोताओं, जब हमारी सोच केवल मैं तक सीमित हो जाती है और हमको भूल जाती है, तब समस्या शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: निस्वार्थता का अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के हित के बारे में सोचना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है श्रोताओं कि अपनी खुशियों के साथ हम दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी बातें इसी विषय को लेकर ढेर सारी रहेंगी। हम जानेंगे कि निस्वार्थता क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, साथ ही हमारे युवा साथियों के जीवन में ये किस प्रकार से अहम भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसी ही ढेर सारी बातें होंगी युवा साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन भी करवाते हैं, तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ कर ली जाए जागृति जी।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि निस्वार्थता स्वयं से आगे बढ़कर सोचना है। जागृति जी, जीवन में हर व्यक्ति सफलता, सम्मान और खुशियों की तलाश तो करता ही है। श्रोता साथियों, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है? जागृति जी, जीवन की वास्तविक सुंदरता तब दिखाई देती है जब हम स्वयं से आगे बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: और आज के समय में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तब प्रतिस्पर्धा और बढ़ चुकी है और लोग अपने अपने लक्ष्यों में ही व्यस्त होने लगे हैं। ऐसे समय में दोस्तों निस्वार्थता का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि हम बात कर रहे हैं निस्वार्थता को लेकर, तो श्रोता साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि कशिश ने अभी आपको बताया कि निस्वार्थता आखिर होती क्या है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर स्वयं से आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता हमें क्यों है, इसको लेकर हम बातचीत करें, तो श्रोता साथियों, यदि हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: एक परिवार तभी खुशहाल बनता है कशिश, जब उसके सदस्य एक दूसरे की परवाह करते हैं। हम देखते हैं कि परिवार में बहुत सारे सदस्य है लेकिन कोई किसी की परवाह न करे तो परिवार बिखर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो परिवार तो वही है दोस्तों जो एक दूसरे की परवाह करे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, तभी हम कह सकते हैं कि ये परिवार निस्वार्थता से हमारे साथ है।
0: बिल्कुल।
1: एक समाज तभी मजबूत बनता है जब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक देश तभी प्रगति करता है जब उसके नागरिक केवल अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की चिंता करते हैं। तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर निस्वार्थता होनी चाहिए, यानी कि जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें दूसरों के लिए समय नहीं मिलता।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कशिश की सोशल मीडिया ने हमें हजारों लोगों से जोड़ दिया है, लेकिन कई बार हम अपने आसपास के लोगों से दूर हो गए हैं। जैसे कि हम घर के लोगों से दूर हो गए, समाज के लोगों से दूर हो गए, कई बार हमें देश के प्रति भी क्या करना है वो नहीं समझ में आता।
0: बिल्कुल।
1: आज सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से मापा जाता है। ऐसे माहौल में निस्वार्थता पीछे छूटती जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोताओं, सच्चाई ये है कि केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी स्थायी खुशी नहीं पा सकता। वास्तविक संतोष तो तब मिलता है कशिश, जब हमारी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इसी के आगे हम बात करें कि निस्वार्थता मानवीय मूल्यों की नींव किस प्रकार से है, तो श्रोता साथियों, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग, ये सभी मानवीय मूल्य माने जाते हैं। जब किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए कोई आगे बढ़ता है जागृति जी, तब वही निस्वार्थता है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं जब कोई विद्यार्थी अपने मित्र को पढ़ाई में मदद करता है, तब वह निस्वार्थता होती है। श्रोता साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी अनजान जरूरतमंद की सहायता करता है, तो वह भी निस्वार्थता की ही पहचान है। यानी कि कहने का मतलब यही है युवाओं की, यही छोटे छोटे कार्य समाज में विश्वास और भाईचारा पैदा करते हैं। आज तकनीक ने हमें जोड़ दिया है, लेकिन कई बार दिलों के बीच दूरी बढ़ा दी है। ऐसे समय में जागृति जी, निस्वार्थता लोगों को फिर से एक दूसरे के करीब ला सकती है।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि आपने बताया कि निस्वार्थता एवं मानवीय मूल्यों के बारे में, यही अगर हम हमारे श्रोता साथियों को परिवार में निस्वार्थता के महत्व के बारे में अगर बताएं, तो श्रोता साथियों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब माता पिता अपनी अनेक इच्छाओं का त्याग करके उसके पालन पोषण में लग जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कशिश, वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। माता के स्नेह, पिता का संघर्ष निस्वार्थता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
0: जी जी।
1: इसी प्रकार दादा दादी, भाई बहन और अन्य सदस्य भी परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार वे अपनी खुशियों को पीछे रखकर परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। यही श्रोता साथियों, निस्वार्थ भावना परिवार को एकजुट रखती है।
0: जी हाँ।
1: विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती, और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद बिना किसी स्वार्थ से करते हैं कशिश, तब उनके बीच विश्वास मजबूत होता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही विश्वास कठिन समय में परिवार को संभालने का काम करता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी चल ही रही है, और जैसा कि हम निस्वार्थता की पहचान कर ही रहे हैं श्रोता साथियों के साथ में मिलकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी निस्वार्थता को लेकर कि निस्वार्थता स्वयं से आगे बढ़ने व सोचने को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: हमने जाना था निस्वार्थता क्या है, साथ ही हम जान रहे थे कि स्वयं से आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता हमें क्यों है, मानवीय मूल्यों के बारे में जाना था और परिवार में निस्वार्थता का क्या महत्व है। यही जानते हैं कशिश कि युवाओं की क्या भूमिका होती है। जैसे कि श्रोता साथियों, अगर युवाओं की बात करें तो आज के दौर में युवा अपने करियर, शिक्षा और भविष्य को लेकर इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जी रहे हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, लेकिन इसके साथ साथ परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझना भी बहुत जरूरी है। हम युवाओं को समझना होगा कि हमारी सफलता केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसमें पूरे परिवार का योगदान भी शामिल है। माता पिता के त्याग, भाई बहनों के सहयोग और परिवार के समर्थन के बिना सफलता की राह आसान नहीं होती। इसीलिए युवाओं, आपको कहना चाहेंगे कि आपका कर्तव्य है कि आप परिवार के प्रति संवेदनशील बने, बुजुर्गों का सम्मान करें और घर की जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाएं।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो श्रोता साथियों, ये तो हमने जाना कि निस्वार्थता में युवाओं की क्या भूमिका है। यहीं अगर समाज सेवा की हम बात करते हैं जागृति जी, तो समाज सेवा केवल किसी संस्था से जुड़ने का नाम नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि समाज सेवा तो एक सोच है श्रोता साथियों। यदि आप किसी अकेले बुजुर्ग से कुछ समय बात कर लेते हैं तो यह भी समाज सेवा हुई।
0: जी हाँ।
1: यदि आप किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हैं तो यह भी समाज सेवा हुई। और इसी के साथ निस्वार्थ सेवा से मिलने वाला संतोष किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ा होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, प्रकृति भी हमें निस्वार्थता सिखाती है। जैसे कि जागृति जी, प्रकृति को हमारा शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि पेड़ कभी ये नहीं सोचते कि उनकी छाया में कौन बैठ रहा है।
0: जी हाँ।
1: नदियाँ कभी ये नहीं पूछती कि उनका पानी कौन उपयोग कर रहा है। श्रोता साथियों, सूरज कभी भेदभाव नहीं करता कि उसकी रोशनी किस पर पड़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में प्रकृति हमें ये सिखाती है कि देना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।
0: और हम कह सकते हैं कशिश कि कई लोग सोचते हैं कि सुख केवल धन और सुविधाओं से आता है, लेकिन सच्चाई ये है श्रोताओं कि सबसे बड़ा सुख प्रेम और अपनत्व में छिपा होता है।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा घर भी खुशियों से भर सकता है यदि वहाँ निस्वार्थ प्रेम हो। वहीं बड़े बड़े घर भी खाली महसूस होते हैं यदि रिश्तों में केवल स्वार्थ रह जाए।
1: जी
0: श्रोताओं, परिवार में निस्वार्थता का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, जरूरत पड़ने पर सहयोग करना, बिना अपेक्षा के प्रेम देना, क्षमा करना और रिश्तों को महत्व देना।
1: बिल्कुल।
0: आज जीवन की भागदौड़ बढ़ गई है, मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को इतना व्यस्त कर दिया है कि कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में श्रोताओं, निस्वार्थता की भावना और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम परिवार के लिए समय निकालते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार को केवल आर्थिक सहायता नहीं चाहिए कशिश, बल्कि भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के लिए काम करने से उन्हें क्या ही मिलने वाला है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जागृति जी, सच्चाई ये है कि निस्वार्थता सबसे पहले हमारी अपनी आत्मा को समृद्ध बनाती है। जैसे कि इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है साथियों, साथ ही इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं।
0: जी हाँ।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे युवा साथियों का वास्तविक उद्देश्य भी समझ आने लगता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, निस्वार्थ बनना आसान नहीं है वैसे तो, लेकिन हम देखते हैं कि आज स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और दिखावे का दौर है। कई बार लोग मदद का गलत फायदा उठा लेते हैं।
0: जी हाँ।
1: और कई बार हमारी अच्छाइयों को कमजोरी समझ लिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी हमें अच्छे कार्यों से पीछे नहीं हटना है। याद रखिए श्रोताओं कि किसी की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है।
0: जी हाँ कशिश, एक उदाहरण के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि श्रोताओं, एक परिवार में दो भाई रहते थे, दोनों नौकरी करते थे। बड़ा भाई हमेशा अपनी जरूरतों और सुविधाओं के बारे में सोचता था कशिश।
1: बिल्कुल।
0: जबकि छोटा भाई परिवार की जरूरतों को महत्व देता था। जब घर में आर्थिक कठिनाई आई तब छोटे भाई ने बिना किसी शिकायत के बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली। उसने अपने कुछ सपनों को कुछ समय के लिए पीछे रखा ताकि परिवार सुरक्षित रह सके। समय बीता गया श्रोताओं, परिवार फिर से संभल गया। उस कठिन समय में सभी ने महसूस किया कि परिवार को संकट से निकालने में सबसे बड़ी भूमिका होती है निस्वार्थता की।
1: बिल्कुल।
0: उस दिन सभी को समझ आया कि परिवार केवल अधिकारों से नहीं बल्कि कर्तव्य और त्याग से चलते हैं। इसलिए श्रोताओं, एक आदर्श परिवार वही होता है जहां सदस्य केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भावना भी रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, भाई बहन एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान मिलता है, तब परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे परिवार समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, हम कह सकते हैं युवा साथियों से कि डिग्री, धन और पद व्यक्ति को सफल बना सकते हैं,
0: जी हाँ,
1: लेकिन निस्वार्थता उन्हें महान बनाती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, चरित्र की असली पहचान इस बात से होती है कि व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में हमारे युवा साथियों को सफलता के जीवन मंत्र याद रखने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सफलता के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है, प्रतियोगिता करनी है साथियों लेकिन मानवता नहीं खोनी है, आगे बढ़ना है लेकिन दूसरों को पीछे धकेल कर नहीं, अपने सपनों को पूरा करना है लेकिन दूसरों के सपनों का सम्मान भी हमें करना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा साथियों याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी वजह से किसी और का जीवन बेहतर हो सके।
0: जी हाँ,
1: जब हम स्वयं से आगे बढ़कर सोचते हैं जागृति जी, तब हम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते बल्कि परिवर्तन की एक प्रेरक शक्ति बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों, निस्वार्थता को अपना संस्कार बनाइए, अपने सपनों के साथ साथ समाज के सपनों को भी एक नई उड़ान दीजिए।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि परिवार जीवन का पहला विद्यालय है और निस्वार्थता उसका सबसे सुंदर पाठ। जिस परिवार में निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण होता है वहाँ खुशियाँ स्वयं रास्ते खोज लेती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि परिवार की असली दौलत धन नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वही परिवार खुशियों से भरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने बहुत सारी बातें की। बातों के माध्यम से आज हमने जाना कि किस तरह से परिवार में निस्वार्थता का महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: अब देख पा रहे हैं कशिश की समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: तो युवा साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में विषय से जुड़ी जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं श्रोताओं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है एक शिक्षक की सीख को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें जीवन की सीख और जिनके संस्कार जीवन पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं हमारे शिक्षक। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का काम भी करते हैं। तो आज कार्यक्रम में जानेंगे एक रेडियो ड्रामे के तौर पर इन सारी बातों को कि एक शिक्षक की सीख किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सीमा और राधा नाम की दो सहेलियां हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, जिसमें सीमा जो है अनुभवी और समझदार महिला है और राधा जो कि युवा महिला है जो जीवन की चुनौतियों से परेशान है। तो बातें ढेर सारी रहेंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दिया।
1: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है एक शिक्षक की सीख को लेकर। श्रोता साथियों, कई बार एक शिक्षक की कहीं छोटी सी बातें वर्षों बाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हम हार मानने लगते हैं, जब हमें सही और गलत का फैसला करना होता है, तब हमें अपने शिक्षक की सीख याद आती है। एक अच्छा शिक्षक केवल विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उसके भीतर छिपी संभावनाओं को भी पहचानता है, उसे आत्मविश्वास देता है और उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। आज का यह कार्यक्रम एक ऐसी ही सीख पर आधारित है जिसने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। तो आइए सुनते हैं दो महिलाओं के बीच के इस रोचक संवाद को।
2: अरे राधा बहन, आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चेहरे पर मुस्कान तो जैसे खोई गई है तुम्हारी।
3: क्या बताऊं सीमा बहन, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी पैसों की परेशानी, लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बनकर रह गई है।
2: अरे राधा बहन, जीवन में परेशानियां तो सबके पास होती है, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला भी तो हमारे अंदर ही होता है।
3: हौसला भी कब तक रखूं? कई बार लगता है कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन परिणाम ही नहीं मिलते।
2: तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने स्कूल के शिक्षक की एक सीख याद आ रही है।
3: कैसी सीख सीमा?
2: अरे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जीवन में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परिणाम देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है।
3: सीमा, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन जब लगातार कठिनाइयां सामने आती है तो विश्वास डगमगाने लगता है।
2: हाँ राधा बहन, यही तो समय होता है जब शिक्षक की सीख काम आती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पेड़ को फल देने में समय लगता है, और किसान बीज बोने के अगले दिन फल मांगने लगे तो क्या होगा?
3: फल तो नहीं मिलेगा।
2: बिल्कुल, उसे धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी, पौधे की देखभाल करनी होगी, तभी कहीं जाकर उसे फल मिलेगा।
3: सीमा, मतलब क्या सफलता धीरे धीरे आती है?
2: बिल्कुल, जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती।
3: सीमा, तुम्हारे शिक्षक और क्या सिखाते थे?
2: वे कहते थे कि दूसरों से तुलना मत करो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
3: बिल्कुल सीमा, ये बात तो आजकल बहुत जरूरी हो गई है। लोग हर समय अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं।
2: हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर बाद में दुखी भी हो जाते हैं। तुम्हें पता है गुरुजी कहा करते थे कि अगर गुलाब खुद की तुलना सूरजमुखी से करने लगे तो वह कभी अपनी सुंदरता नहीं देख पाएगा।
3: वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है।
2: हाँ, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, हमें अपनी खूबियों को खुद ही पहचानना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल सीमा, आजकल तो बच्चों में भी धैर्य कम होता जा रहा है।
2: सही कहा, हमारे शिक्षक कहते थे कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नया पाठ होती है।
3: वो कैसे?
2: अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय एक बार गिर जाए और फिर भी कभी साइकिल न चलाए, तो क्या वह साइकिल चलाना सीख पाएगा?
3: बिल्कुल नहीं सीमा।
2: हाँ, उसे बार बार प्रयास करना होगा। जीवन भी ऐसा ही है राधा, गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना गलत है।
3: हाँ सीमा, तुमने ये बात तो सच कही। अगर लोग ये बात समझ जाए तो बहुत सी निराशाएं खत्म हो जाए।
2: हाँ बिल्कुल, और एक और बात गुरुजी हमेशा कहा करते थे।
3: वो क्या सीमा?
2: अच्छा इंसान बनना सफल इंसान बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
3: आज के समय में तो लोग केवल सफलता की ही बात करते हैं।
2: हाँ, लेकिन सफलता बिना अच्छे चरित्र के तो अधूरी है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान बन जाए लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता हो ही नहीं, तो लोग तो उससे दूर ही रहेंगे।
3: बिल्कुल सही।
2: गुरुजी कहते थे कि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, उसे तो अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है।
3: हाँ सीमा, अब समझ आ रहा है कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते थे।
2: हाँ, शिक्षक जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।
3: हाँ सीमा, मुझे भी अपने स्कूल के शिक्षक की याद आ रही है। वे कहती थी कि हर दिन कुछ नया सीखो।
2: देखा, वर्षों बाद भी उनकी बातें हमें याद है।
3: क्योंकि सीमा, वे बातें केवल शब्द नहीं थी बल्कि जीवन की सच्चाई थी।
2: हाँ, और यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत होती है।
3: सीमा बहन, आज तुमसे बात करके मन बिल्कुल हल्का हो गया।
2: क्यों?
3: क्योंकि मैं अपनी समस्याओं को अंत समझ रही थी, जबकि वे तो जीवन की परीक्षा हैं।
2: बिल्कुल, और एक बात और याद रखो बहन, हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाने आती है।
3: सीमा, अब मैं परेशानी से भागूंगी नहीं, उसका सामना करूंगी।
2: हाँ, और यही तो एक सच्चे शिक्षक की सीख है।
3: और मैं यह सीख अपने बच्चों को जरूर दूंगी।
2: हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ी भी मजबूत, आत्मविश्वासी और संस्कारी बने, है ना?
3: हाँ बिल्कुल।
2: चलो फटाफट से चलो, घर के काम कर लेते हैं।
3: हाँ चलो चलते हैं सीमा।
1: साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना सीमा और राधा की बातों को, कि किस तरीके से सीमा राधा को समझा रही है कि जीवन में परेशानियां तो आती ही है, उन परेशानियों से हमें कैसे बचने की जरूरत है। श्रोता साथियों, एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं पढ़ाता बल्कि जीवन का अध्याय भी खोलता है। वह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखें, असफलताओं से कैसे सीखें, दूसरों का सम्मान कैसे करें और अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि समय बीत जाता है, स्कूल छूट जाता है, कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की सीख कभी समाप्त नहीं होती। वह हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जब जब श्रोता साथियों जीवन की राह कठिन होती है, तब तक शिक्षक के शब्द दीपक बनकर हमारा मार्ग रोशन करते हैं। हमें अपने जीवन में उन सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने हमें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाया है, क्योंकि एक शिक्षक की सच्ची सफलता उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों में नहीं बल्कि उनके अच्छे चरित्र और अच्छे कर्मों में दिखाई देती है। याद रखिए दोस्तों कि किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन शिक्षक उस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनों अमे अमारे टाइम माते हासिल थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लई ने एक नया विषय निहाते। तो भाई बोनों आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आज बारिश नो पानी है एनु आपड़ा संग्रहण हरते करी शक जाणंगा। आज कार्यक्रम ने माध्यम देखी कि संरक्षण हूँ कहवाए है ने आ आपड़े किसान भाई बहनों बल्ले केम जरूरी है

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एवो केवाय, जैविरे एक बैरो मजबूत बने हैं, तैविरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं। पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी, अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी। जमीनी पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है। इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपना फैसला खुद लेवानी ताकत। तो आओ बोलो, आजे मली नी आवाज उठावो। इतले हंगरी सूर्य, हंगरी बुने, हंगरी माए आपना हक ने जमी माते गर्व थकी उभी थई शके। बोना ने अधिकार, किम की अधिकारस असली ताकत है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जैवरे सब सोरा भणेगा, तारे स्तु देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
6: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
6: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
6: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता भी एक टूल है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जैसे कि आज दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की शांति कहीं खोती जा रही है।
0: जी जी।
1: हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, तनाव, डर या असमंजस में जूझ रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन अशांत रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा साधन है जो इस अशांति को कम कर सके।
0: जी जी।
1: और इसका उत्तर है अंजलि, एकाग्रता।
0: बिल्कुल।
1: एकाग्रता केवल पढ़ाई या नौकरी में सफल होने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने और जीवन में संतुलन बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में जानेंगे कि अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता किस तरीके से एक टूल की तरह कार्य करती है। बातें ढेर सारी हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों से विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं अशांति मिटाने के लिए एकाग्रता भी एक टूल है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, एकाग्रता केवल जैसा कि आपने बताया था कि नौकरी में सफल होने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन को स्थिर करने और जीवन में संतुलन बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा भटकता हुआ मन। मन कभी अतीत की गलतियों से उलझ जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कभी वर्तमान में रहना उसे सबसे कठिन लगता है। जागृति जी, जब मन एक साथ कई दिशाओं में दौड़ता है तब व्यक्ति थक जाता है, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है, वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है। यहीं पर एकाग्रता हमारी मदद करती है।
0: जी हाँ,
1: एकाग्रता का अर्थ केवल किसी एक काम पर ध्यान लगाना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य पर पूरी तरह ध्यान देता है तब उसका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, परिणाम स्वरूप तनाव कम होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, आपने देखा होगा कि जब हम किसी पसंदीदा काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तब कुछ समय के लिए हमारी सारी चिंताएं गायब हो जाती है। कभी कोई चित्रकार चित्र बनाते समय का ध्यान नहीं रखता, कोई संगीतकार संगीत में खो जाता है, कोई किसान खेत में काम करते हुए अपनी परेशानियों को भूल जाता है।
1: जी जी,
0: ये सब एकाग्रता की शक्ति है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाने वाले साधनों की भरमार। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले संदेश, अनगिनत वीडियो और सूचनाएं हमारे मन को हर पल खींचती रहती है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ मिनट में दूसरे काम की ओर चले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका परिणाम श्रोता साथियों ये होता है कि हमारा मन कभी पूरी तरह शांत ही नहीं हो पाता। अधूरे ध्यान के साथ किया गया काम न केवल कम प्रभावी होता है बल्कि मानसिक थकान को भी बढ़ाता है। एकाग्रता हमें इस बिखराव से बचाती है। श्रोता साथियों, एकाग्र जो व्यक्ति होता है उसका मन समुद्र की शांत सतह की तरह होता है। बाहर चाहे कितनी भी लहरें उठे, भीतर स्थिरता बनी रहती है। और यही स्थिरता जागृति जी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जब जीवन में समस्या आती है तब अशांत मन घबरा जाता है, लेकिन एकाग्र मन समाधान खोजने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि एकाग्रता केवल शांति नहीं देती बल्कि संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी देती है। युवाओं के जीवन में तो एकाग्रता का महत्व और भी अधिक हो जाता है। आज का युवा अवसरों से भरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन अवसरों के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: प्रतियोगिता, करियर की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता और सामाजिक दबाव कई बार युवाओं को मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। यदि युवा अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना सीख जाएंगे तो वे इन चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि एकाग्रता आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं श्रोता साथियों, तो उसके परिणाम बेहतर आते हैं। अच्छे परिणाम हमें अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाते हैं और धीरे धीरे यही विश्वास जागृति जी सफलता की नींव बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है श्रोता साथियों, ये एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक होता है, उसी प्रकार मन को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन ऐसे साधन है जागृति जी जो एकाग्रता को बढ़ाने में सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना भी मन को स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसके अलावा अपने दिल की स्पष्ट योजना बनाना भी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है तब हमारा मन कम भटकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और भी बातें जानेंगे एकाग्रता को लेकर, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम की जरूरत होती है, उसी प्रकार एकाग्रता का अभ्यास करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: एकाग्रता केवल श्रोता साथियों व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तब गलतफहमियां कम होती है। जब समाज अपने वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तब विकास की गति बढ़ती है। जब राष्ट्र अपने लक्ष्यों पर एकाग्र रहता है तब प्रगति के नए अध्याय लिखे जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एकाग्रता केवल व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज की भी शक्ति है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण निकालें जहां हम स्वयं से जुड़ सके। कुछ समय मोबाइल से दूर रहें, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, कुछ समय अपने विचारों को समझने में लगाएं और कुछ समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में लगाएं।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि जो अशांति हमें परेशान कर रही थी वो कम होने लगी है। श्रोताओं, अशांति बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की अव्यवस्था से अधिक पैदा होती है।
0: जी जी।
1: जब मन व्यवस्थित होता है तब कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। एकाग्रता उसी व्यवस्था की कुंजी है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, यह हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है, यह हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें मानसिक शांति का भी अनुभव कराती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन के भाग दौड़, तनाव और अशांति के बीच यदि कोई सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है तो वह है एकाग्रता। जब ध्यान बिखरता है तो शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वही शक्ति सफलता, संतुलन और शांति का आधार बन जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है बल्कि सही दिशा देनी है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है, मजबूत चरित्र बनाता है और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब मन शांत होता है अंजलि तो विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय मजबूत होते हैं और जीवन की राह आसान लगने लगती है। अशांति के अंधेरे को दूर करने के लिए हमें बाहर नहीं अपने भीतर एक दीप जलाना होगा और उस दीप का नाम है एकाग्रता। श्रोताओं, आज से हम हर दिन कुछ पल स्वयं के लिए निकालें ऐसा मन में हमारे ठानना होगा, अपने मन को समझना होगा, अपने लक्ष्य को पहचानना होगा, अपने विचारों को सही दिशा देनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख जाते हैं वो जीवन की हर चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, शांत मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं और अच्छे विचार ही एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम में सफल होने का साधन नहीं है बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: जिस व्यक्ति का मन स्थिर और लक्ष्य पर केंद्रित होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, अपने निर्णय सोच समझ कर लेता है। आज के समय में जब हमारा ध्यान हर पल मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के आकर्षणों से भटकता रहता है तब एकाग्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि एकाग्रता जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मसंयम से विकसित होने वाली क्षमता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें, समय का सही प्रबंधन, नियमित अभ्यास, वर्तमान विश्राम और सकारात्मक सोच हमारे मन को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और हर कार्य की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाती है।
1: जी हाँ अंजलि, तो इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहेंगे कि जीवन में अशांति पूरी तरह से समाप्त हो जाए ये संभव है ही नहीं, लेकिन अशांति के बीच भी शांत रहना, परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रहना और चुनौतियों के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही संभव है। यही शक्ति हमें एकाग्रता देती है। इसलिए याद रखिए, जब मन बिखरता है तो समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब मन एकाग्र होता है तो समाधान दिखाई देते हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए अपने मन को भटकाओ नहीं बल्कि उद्देश्य से जोड़िए, अपने विचारों को चिंता नहीं बल्कि चिंतन की दिशा से जोड़िए। इसलिए हम अपने मन के स्वामी तभी बनेंगे जब तक हम अपने उद्देश्य में क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि एकाग्र मन ही शांत जीवन, सफल भविष्य और सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कह सकते हैं श्रोता साथियों को कि अपने मन को केंद्रित करो और सपनों को साकार करो।
1: बिल्कुल,
0: एकाग्रता को शक्ति बनाओ और जीवन को बेहतर बनाओ।
1: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए यह गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
2: मनीषा और कशिश, आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है अजवाइन का पौधा किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
0: जी हाँ,
2: हम देखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियां प्रदान की हैं।
0: बिल्कुल,
2: इसमें अजवाइन एक ऐसी महत्वपूर्ण औषधि या जड़ी बूटी है जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है।
0: जी हाँ,
2: श्रोता साथियों, इसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन इसके औषधीय गुण इसे एक प्राकृतिक औषधि का दर्जा देते हैं।

0: श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाएं हम।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अजवाइन का पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से एक प्राकृतिक रक्षक है और इसके औषधीय गुण क्या है।
1: जी हाँ,

0: अगर बात करें अजवाइन की अंजलि जी, तो देखते हैं मनीषा और अंजलि जी की, अजवाइन एक सुगंधित बीज वाला पौधा होता है
1: जी हाँ,
0: जो श्रोता साथियों कई क्षेत्रों में उगाया जाता है
1: जी हाँ।
0: इसके छोटे छोटे भूरे रंग के बीजों में तीखी सुगंध और हल्का कड़वा स्वाद होता है और इन्हीं बीजों का उपयोग मसाले और औषधि दोनों के रूप में किया जाता है
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि अजवाइन केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि ये अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें श्रोता साथियों फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण औषधि विशेषता को बढ़ाता है।
1: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आयुर्वेद में भी अजवाइन को वात और कफ दोष को संतुलित रखने वाली औषधि माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: इसका स्वाद तीखा, प्रभावी, गर्म और पाचन को मजबूत करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार श्रोता साथियों यह है वो हमारी भूख बढ़ाती है, भोजन को अच्छी तरह से पचाने में सहायता करती है, साथ ही श्रोता साथियों शरीर में जमा हानिकारक गैस को भी बाहर निकालती है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कशिश और अंजलि जी के कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों में अजवाइन का उपयोग पीढ़ियों से किया जा रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अजवाइन का आयुर्वेद में क्या महत्व है, यही बात करें पाचन तंत्र के लिए ये वरदान किस तरीके से है, तो श्रोता साथियों अजवाइन का सबसे बड़ा लाभ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। भोजन के बाद अगर थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन चबान ले हम, तो पाचन क्रिया जो है वो सक्रिय रहती है, पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करती है, अपच से राहत देती है और पेट फूलने की समस्या को कम करने में भी मदद करती है। जिन लोगों को बार बार गैस, भारीपन या बदहजमी की शिकायत रहती है उनके लिए सीमित मात्रा में अजवाइन का सेवन करना लाभदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: अजवाइन पेट में पाचक रसों के स्त्राव को बढ़ाकर भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो ये तो आपने बात की पाचन तंत्र की, अब यही अगर कब्ज की समस्या में उपयोगी है किस प्रकार से इसको लेकर हम बात करें, तो दोस्तों कब्ज आज की एक आम समस्या बन चुकी है ये बात हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक कब्ज रहने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे में अजवाइन जो है वो आंतों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है
1: जी हाँ।
0: साथ ही मल त्याग को आसान बनाने में मदद करती है। साथियों कह सकते हैं कि पर्याप्त पानी और संतुलित आहार के साथ सीमित मात्रा में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो कब्ज और पाचन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उससे हमारा बचाव हो जाता है।
2: बिल्कुल
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं
0: जी हाँ,
1: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी अजवाइन का पौधा और उसके औषधीय गुणों को लेकर, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभकारी है इसको लेकर। कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था कि अजवाइन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। साथ ही हमने जाना था कि ये पाचन तंत्र को किस प्रकार मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर बात करें श्रोता साथियों गैस और एसिडिटी में राहत, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तेल और मसालेदार भोजन, अनियमित दिनचर्या और देर रात तक भोजन करने से गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: अजवाइन में मौजूद सक्रिय तत्व श्रोता साथियों गैस बढ़ाने की प्रक्रियाओं को कम करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि पेट में होने वाली ऐंठन और जलन से भी राहत में मदद करता है। इसी कारण श्रोता साथियों भारतीय घरों में भोजन के बाद अजवाइन का सेवन एक पारंपरिक आदत रही है।
2: बिल्कुल। यही कशिश और मनीषा बात आती है भूख बढ़ने में सहायक की। तो श्रोता साथियों, कुछ लोगों को भूख कम लगती है जिसके कारण शरीर को आवश्यक पोषक नहीं मिल पाते। अजवाइन पाचन रसों को सक्रिय कर भूख बढ़ाने में मदद करती है। इससे भोजन के प्रति श्रोता साथियों रुचि बढ़ती है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त हो पाते हैं। अजवाइन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक मुक्त कणों से बचाने में सहायता करते हैं। इसके जीवाणुरोधी और फफूंदरोधी जो गुण होते हैं श्रोता साथियों शरीर को कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसका सीमित उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग प्रदान करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही श्रोता साथियों हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की, तो देखा जाता है कि अजवाइन का उपयोग केवल पाचन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए भी लाभकारी है।
2: बिल्कुल
1: अंजलि जी और मनीषा, मौसम बदलने पर जो आम समस्याएं हमें हो जाती है जैसे कि सर्दी, नाक बंद, हल्की खांसी, इन सभी समस्याओं में पारंपरिक रूप से अजवाइन का उपयोग किया जाता है।
3: जी हाँ
1: दोस्तों, इसकी तीखी सुगंध श्वसन मार्ग को खुला रखने में सहायता करती है।
2: बिल्कुल।
1: साथ ही सांस लेने में कुछ हद तक आराम का अनुभव करा सकती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि अधिक बोलने, धूल धुए या मौसम में बदलाव के कारण भी हम देखते हैं कि हमारे गले में खराश आ जाती है।
2: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों अजवाइन का सीमित और पारंपरिक उपयोग गले को आराम देने में भी सहायक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: यही कारण है श्रोता साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग हैं वो घरेलू उपायों के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
2: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि स्वस्थ हृदय पूरे शरीर के लिए आवश्यक है।
1: जी हाँ,
0: अजवाइन में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर में वसा के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। श्रोता साथियों हम देखते हैं कि यह किसी भी प्रकार की बीमारी के उपचार में उपयोगी है। लेकिन श्रोता साथियों संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही सीमित सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है।
2: बिल्कुल। तो कशिश और मनीषा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अजवाइन के कई सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। अजवाइन का पौधा प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो साधारण दिखने के बावजूद असाधारण औषधीय गुणों से भरपूर है।
1: बिल्कुल।
2: कहना चाहेंगे कि यह केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जो स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, श्वसन स्वास्थ्य का सहयोग करने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने और दैनिक जीवन की कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में सहायक भूमिका निभाने के कारण ही अजवाइन का जो महत्व है वो सदियों से बना हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू चिकित्सा में इसका विशेष स्थान इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में उपलब्ध सरल साधन भी स्वास्थ्य की रक्षा में प्रभावी योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दवाओं पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तब ऐसे में श्रोता साथियों अजवाइन जैसी प्राकृतिक औषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: वैसे तो श्रोता साथियों ये किसी गंभीर बीमारी का विकल्प या पूर्ण उपचार नहीं है, लेकिन संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और साथ ही स्वच्छता के साथ इसका उचित और सीमित उपयोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
2: जी हाँ,
1: इसलिए हमें अपने पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक सोच के साथ अपनाते हुए साथियों प्राकृतिक औषधीय पौधों के महत्व को समझना चाहिए।
3: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हर परिवार अजवाइन जैसी उपयोगी वनस्पतियों के गुणों को जाने और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करे तो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में हमारी भूमिका अहम होगी।
2: बिल्कुल कशिश।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से अजवाइन और उसके पौधे के औषधीय गुणों को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल। हाँ। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अभी ही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ

0: तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
3: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ahí, ahí, ahí, ajá.

हो यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: हसीना से ये मुलाकात हो गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
1: अब क्या सुनाए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन इटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।